0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

hagan sin que yo del sin papá que tiene Machine.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई भी

Etiquette.

चौ का लक्ष्य और लक्षण देख खुशी।

योग से काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। एक दो को देख और की विश

साथियों

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

правда не їх сам.

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बाप दादा को अल्लापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी, मैं नारटी नहीं, मैं चारटी। Suck.

Shit.

Baby.

sempre me teria que roubar. Damn.

Sai!

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

दृढ़ संकल्प करते हो

Course, a victory.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते।

सकते हो। हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है। पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से

उन सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं उन सभी बच्चों सभी को मस्त

be. Bob Thunder be money, money. Don't scurry, Bob Thunder.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

ये परमा।

मुझे आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना, दुनिया वाले कितना प्रयत्न कर सरंग लगाया, ज्ञान का गुलाल

रंग से।

猫给了我们。

0: Oh, get off of me. आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष आप में है तो पास विधानर हो जाए। इसको इमर्ज रखना, सान शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कई अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, दो हाथ नहीं एक। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो, बहुत अच्छा। मानते हो, बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? सेवा में लगा।

रिकॉर्ड में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से सोला माना संभव।

Much nesse.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबको राज भी करना है तो राज में परिवार की आवश्यकता होती है, और 21 जन्म
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो, बहाने बाजी आलस अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो।

सारे विश्व के आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे

विशेष पूर्वज आत्मा अनुभव करते हो अपने को, विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा

जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ कर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डाल डालिया है। सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कलप फिरके का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो, आपका कहाँ स्थान है। जर में भी आप हो, तना भी आप हो। साथ में जानते हो ना, इसे नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से स्मृति से वृत्ति से दृष्टि से मिलते हो से

0: ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Like लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: control the sea, Maya.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, अभी सभी एक से

जैसे शरीर शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फ्रिश्ता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे को मुबारक देने आई हो। बाप आपसे मुबारक लेने आई हो। देने भी आई हो, लेने भी आई हो। साथ साथ की निशानी है।

जन्म दिवस

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: नहीं तो सब चलता है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दो। दिया डायरेक्शन, अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दी मुख से ने। ऐसे त्यार Yeah.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Wow.

से पाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए।

मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा। ये तो शब्द हर कार्य में यूज कर लो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय में करते

sudzej.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Percentage yoga keys.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बात।

见。Deep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हल चलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां चाहो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

से एक जन्म के मूल्य के अनुसार फिर संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्यों संगम योग के

0: संकल्प दोनों के मूल्य को जान। समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म को में सफल करने से अनेक जन्म वोट की प्राप्ति जमा होती। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धनलपन।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सही

0: जाओ उतना बढ़ा सकते जब साइंस के साधन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी अपन ने मट का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो है वो आजकल तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स से, धारणा के पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन स्वा नहीं करते हो योग अग्नि में, और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती है ना बात की, वो ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, दस वाली मुरली पड़ी तो भी फिर आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में चलाया नहीं, स्वाह नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी पाप सागर में डाल समापन। इसलिए इस वर्ष में पाप साथ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये नहीं है लंदन में बोली बाजी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं थे। सुनाया एक एक संकल्प का इक्कीस जन्म का कनेक्शन, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बताओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, बिन बिन जानते हो न ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप स्मृति की ड्रिल जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप है ऐसे आपके भी तीन रूप है, ब्रह्मा फरिश्ता और देवता। इन तीन रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो, इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल।
3: सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Sesame Barbie. Del C. Mira, Baba Kenge. Por Matma Baba. Mira, Baba. Tu cavate. Que Baguan. Sata Hazure. Agarab. Del C. Sesame Barbie. बच्चों के लिए ही तो है, और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का ऐसा सर्विस तो करते हो वो तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छे अच्छे है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा से मिलने तक पहुंचे हो, आगे क्या करना है? फॉलो फादर ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप बच्चों को खुशी होती है। वाह, बच्चा आ गया। सारे परिवार को

0: papi. Fallo per mamma. Capipi. Cucciove.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अवित हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चल रहा है, तो हम है साकार और आप हो आकार और निराकार। अभी साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ एक चाहिए, योग लगता नहीं है तो क्या करें। उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखना चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, है डॉक्टर उल्टी करनी चाहिए ना करनी चाहिए,
2: सामने उल्टी करें।
1: सोचो, पाप की आखिरी उल्टी करेंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वायुमंडल क्या भी बने,

0: आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, आप हर एक बच्चा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। चल

0: नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को भी दीवार पर शरद चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Foto.

çok.

0: resista. Apa sabka kitna samarpan tamahin.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Peace.

що ти бідо, сваробо, парамтами бабки сад.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See you.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक
4: शरत

So.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस होके कर लेते हैं। कुछ सिक्या, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से सिक्या भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दे। सिर्फ सिक्या से अभी सभी सिक्यक बन गए हैं, इसलिए सिक्या के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, उसमें मिलके नमाज के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीखिक भी हो अगर नहीं करते हैं तो क्यों, अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है,
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते। तो पाप को देने दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। Let's go.

me.

Pilze.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा। समय पर ठीक हो जाएंगे, जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: फिकर बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Oh, shit.

Ciao.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए।

इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी पाप है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृत्त ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो देश आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं सुना कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की बात, व्यर्थ संकल्प के समापत्ति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकार्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे हैं और एक दो को भी भगवत साधे उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: उसमें हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना। छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही सिखा दी, खुश दिमाग और खुश किस्मत। हर एक का चेहरा ऐसे हो तो अभी भी अच्छी की उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ विशेष प्रण।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Fishing.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ಸಂತುಷ್ಟಂ ಮಾಡಿನ. ಸ್ವಯಂ ಕೋಪಿ ಪಿಟಿ.

Chapa.

Son.

ಶಕ್ತಿ. Shit.

इसीलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता।

parte. Mano Ranjan.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

but fishing.

口

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कल्याणकारी बनना उसमें

कितने परसेंट सेवा की वजह में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन सोट

Pharao. अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा उस समय अटेंशन उस हलचल

Chico. अपन ने विश्व कल्याणी का स्वरूप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारे विरक्य की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज रहम आता है। चिल्ला रही है, रैम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्व आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों को आवश्यक
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

Ned!

Ich bin Mutter.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना, बीमार हो गए तो रोना शुरू कर दें, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी के बारे जी, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते, इसलिए हिम्मत वाले बन तो बाप भी मददगार बने, ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो बाबा तो मदद दिए, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्चे की हिम्मत फिर बाप की मदद, तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं, तो आते अक्षर याद नहीं करो बाबा मददगार है, लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर दैन्य शक्ति तो कैसी भी

Sydney.

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्टी बन

रस्ती बन के सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं ये मेरा बन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करते, ये मेरा बनाता है ना तो सब बातें, मेरा जहां भी आया वहां उत्ती का फेरा हो जाता है, बदल जाती। अगर उत्ती कहां भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा उसको चेक कर और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। हाँ ये बात है, क्या नहीं बने।

0: Don Sancho's father, Camacho, Macacaro, Cachang Icaro, Macacaro, and Sobi Matuadeo, Imate.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: यूज करना चाहिए, सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाए। और दूसरी बात क्या होती है, चलो
3: No.
2: नीचे ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अटेंशन रखो दो बात का, एक सच्ची दिल सच्चाई, अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से क्या है, गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है, और आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा, फटेगा ना। हो नहीं है, इसीलिए माँ दादा उस नजर से आपको नहीं देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहता सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठो।

Je vais baiser.

0: vocês. Tati, o quê? Pode ler. Tati, querida. Tu tá de legal. Que mochê.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Radio-Canu.

0: सुना मैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर स्थूल शरीरधारी, इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले। संस्कार को मिलाना हो जाते हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Controlling power.

Rose.

就

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आकर के दृढ़ संकल्प कर। सो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लगता है अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। सेटों में चेंज करके तब नई सदी में नवीनता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देगा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी सिर्फ

0: उसको भी बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है और प्यार भी गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: भेज देना चाहिए और फॉरेन की सेवा शुरू से वायुमंडल में फैलने का साधन ये जो शुरू में ही सब एक स्टेज पर एक समय में इकट्ठे बैठते थे, क्रिश्चियन भी मुस्लिम भी जो भी सभी है भिन्न भिन्न, वो सब एक समय स्टेज पर इकट्ठे बैठते ऐसे ही भारत में भी विदेश में भी कोई भी चाहे शाखाएं है लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए।
1: जो करना है
0: क्योंकि समय है।

0: Shut up.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा परिवार का विशेष कार्य धुआ देना, धुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करते हैं, अभी धुआ लेगा कैसे? धुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वो पद धुआ देते हैं। आप धुआ देने चाहते हो लेकिन वो पद धुआ देता है। लेकिन पद धुआ दी लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वो है? वो देने वाला है, आप लेने वाले। तो उसकी पद धुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, पद दुआ लो नहीं, लेने वाले आप।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप की मदद का है, ये अनुभव करके देखना। हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना, सर्वशक्तिवान
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Title de la

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार विरक्षा होता है ना, तो बीज उसमें छिप जाते हैं। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जब खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने किसानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: कोई वापस लेते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं, पापा हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है मानते भी है लेकिन क्या करे वापस आ जाते। सोचो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैपन के कारण अवमान भी आता, क्रोध भी आता है, दोनों दोनों काम अपना कर लेते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah।

0: कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने व्रत व दूसरों के व्रत कार्य में लगाते हो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। तो अनुभव की अथॉरिटी एड होती जाती। चेक करो अपने आपसे, पूछो कि ये सारे खजाने जमा है और साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अथॉरिटी में अनुभव की सबसे ज्यादा कही जाती। तो हर एक को अपना खाता भराना है, चेक करना है, क्योंकि अभी अभी चांस है। फिर चांस भी खत्म हो जाएगा, चाहेंगे खजाना भराए लेकिन भरा नहीं सके।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों कह बाप दादा, कुछ समय से लेके वार्निंग दे ही रही है समय की। हर बच्चे क्या पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक सदा एवर रेडी।

समय

साधारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखति वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देंगे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रैल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकता।

0: amigo y Chipa, Chipa de Israel dice, Sadarne, to a la pila pan, ek mota rupe, ek main rupe, shabd dono mein ek hi hai, sab chalta hai. देख लिए क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलग पीले बन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वो कसे भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी

sick.

Sa

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

欠你。

मदद कर सकते हो। कभी

इस कभी

Bunsen.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Adiós.

Bye.

Shiver one sheet.

Sick.

Seram.

सवेरे सवेरे

Shop.

Luciano Domingos.

sauter.

確かに。

see people.

0: चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से क्रास तो करते ही

मेरे बाप दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं।

पानी और गर्भ में पास हो के दिखे। हो सकते हैं, हो सकते हैं, टीचर्स बताओ, हो सकते हैं। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा छोड़ा है। क्यों कपा

0: ます。言えた言えた。言えられる話。あらべらばん。
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Christ.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

vivir triste, dime.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लाइफ टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं बड़ा होता। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान रह चाहे छोटी और बड़ों से भी कांका कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की मैं सुस्ता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों

0: कल अपने लग जाए। मैं भी मारूं, मैं भी मारूं। और क्या होता है ये पाठ पक्का हो जाता है ना, मैं भी मारूं तो कभी कभी समय बीमार होते नहीं है, मानो कमर में दर्द है, मेजॉरिटी को होते एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत और कब मेहनत मुक्त बनेंगे, ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते।

Dulce.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का मैं तो आप साधारण नहीं हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

次。

सुख

Legend.

Tiens.

Eat it.

विश्वसेवको सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में सेवा भी

Joe, beach.

Nossa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Stop it.

Esses são.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।